0: ਸਾਡੇ ਖਲੀਲ ਜੀ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਹਾਂਜੀ ਖਲੀਲ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ।
1: जी जानू कैसे हैं आप दर्शन
0: बहुत
1: साहब।
0: बढ़िया बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल ठीक ठाक।
1: जी, मेरा ये कहना है कि अखलाक और तमीज तमद्दुन से सारे परिवार को आप खुश रख सकते हैं,
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि अगर एक बंदा भाई बदअखलाकी करता ना दर्शन साहब, तो उसका असर सब पे पड़ता।
0: बिल्कुल
1: और बदअखलाकी का ताल्लुक ऐसा है, मैंने देखा है बहुत सी वीडियो में, जो रियलिटी है कि घर में किसी के पेट होता, देखिए बिल्ली कुत्ता
0: जी
1: वगैरह,
0: जी
1: इवन पिंजरे में बंद हुए हुए तोते को मैंने देखा है कि जब किसी की लड़ाई वगैरह होती आपस में बहस भी,
0: हाँ
1: तो वो अपना हाथ उठा के अपने चोंच पे नोचने लगता। मतलब
0: हाँ
1: ये किस किस्म के लोग हैं यार, प्यार मोहब्बत से रह सकते। मुझे देखो, अकेला हूँ मैं पिंजरे में, ना मेरे साथ कोई गर्लफ्रेंड है ना मेरी वाइफ है,
0: जी
1: मगर मैं कितना सुखी हूँ बोल के, यानी इस तरह का उसका व्यवहार मैं देखा। मैं बोला यार, एक जानवर भी नाराजगी और नागवारी का चेहरे पे उसके शिकन आ गई, यानी चेहरे पे उसकी झुर्रियां जैसे आ गए कि यार ये क्या काम कर रहे हैं इंसान। तो कभी भी ऐसे माहौल बनाओ जिससे सब खुश रहो, और
0: हाँ
1: आराम से रह सके। खुशी से रहने के लिए PhD की डिग्री नहीं चाहिए दर्शन साहब।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: प्यार मोहब्बत से रहना, टेंशन देना नहीं टेंशन लेना नहीं। हर इंसान में टेंशन है, महंगाई को कम करो क्योंकि इससे फासले हो रहे हैं। महंगाई जब तक दुनिया में इसको रोकेंगे नहीं, याद रखना ये सारे फासले बढ़ते जाएंगे। क्योंकि जो बंदा चाय पे भी बुलाता ना, तो बोलता यार दूध महंगा हो गया, तो यार पहले तुम ये बात नहीं बोलते थे, वो यार पहले सस्ता था, तो महंगा कर रहे क्यों? दुनिया में महंगाई आने की एक ही वजह, याद रखिएगा, हर फाइनेंस मिनिस्टर ये बोलता है कि भाई हम तो डेफिसिट में जा रहे हैं यार, हमारा तो नुकसान हो रहा है, हम सरप्लेस में नहीं है, तो क्या करें? बस कमोडिटीज पे पैसे बढ़ाओ, दाल पे बढ़ाओ, पेट्रोल तेल सारी चीजों पे, ताकि मजबूर होके आप खरीदें, तो यानी आप हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। आप
0: चलो,
1: तो इन चीजों को करना चाहिए।
0: शुक्रिया जी,
1: बहरहाल
0: बहुत बहुत खलील जी, बहुत बढ़िया आपने
1: आपका भी
0: रिव्यू
1: शुक्रिया।
0: जगह। थैंक यू वेरी मच।
1: शुक्रिया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सत
0: श्री
1: श्रीकाल
0: अकाल
1: सारों, तो मेरी तरफ से।
0: थैंक यू सत श्री अकाल।
1: ओके जी, ओके।

0: Mohan. Contact us at richmohan.com.
1: जे तुसी भी करना चाहते हो अपना खुद का रेडियो प्रोग्राम तो अज ही सानू कॉल करो 647-504-1414।

क्या बात है, क्या चाल है सब दे? उम्मीद है कि तुसी सब ठीक ठाक हो, एंजॉय कर रहे हो इस बड़ी ही खूबसूरत शाम नु। शाम दे विच जुड़ चुके हैं थोड़े नाल एक बार फिर प्रोग्राम पंजाबी लहरां लैके। ठीक 9 बजे तक थोड़ा साडा साथ रहेगा भाई। हैप्पी हैप्पी मंडे ते हैप्पी, ओ क्या बात है, 1 जून।

0: आजादी 9 647 835 92 94 6478355294।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित, एक वधेंदी आरजू दूजा साहेबा वे चित दे महावाका अनुसार। सारे ही नगर निवासियां नूं बेनती कीती जांदी है, भाई अमृत वेला हो गया, 4 बज गए, उठो, इशनान पानी करो।

0: डाउन पेमेंट मॉर्गेज दी बनी का गल
1: होए शम्मी पठल होरां नाल हो गई गल घर लेके देण तो अलावा डाउन पेमेंट ते मॉर्गेज दा भी मसला करनगे हल
2: रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदन वेचन या इन्वेस्टमेंट लई याद रखो भरोसे ते विश्वास

0: doppelsalt, jump, assas, grassas, hibiscus, nodded, horsey, beasts, bole, sonny hall, sassier call.
1: मम्मी पापा दे वीजे री सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पांटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है
2: शमी पठल होरा ने तुहाडा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है
3: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल
4: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दी बेस्ट डील ले याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
3: 416-917-7763 416-917-7763 Life insurance, visitor insurance, super visa insurance, critical illness, disability insurance, RESP, travel insurance, convert expensive mortgage insurance to term insurance.

Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 Brampton इंडियन फ्रूटलैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूटलैंड 9054569900

0: यार इना इंश्योरेंस ने ते तू अगड़ाता वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा
1: टॉप फाइनेंशियल इंक तो जो अपनिया बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने
2: क्रिटिकल मॉर्गेज आरईएसपी आरआरएसपी विजिटर इंश्योरेंस सुपरवीजर

0: Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 Brampton इंडियन फ्रूटलैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल्ड रोड Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूटलैंड 9054569900
1: डॉक्टर कुमार लगे हुए नशे तो मुक्ति दवाने वास्ते शराब अफीम पोस्त डोडिया के नशे तो दूर कर देंगे डॉक्टर कुमार लेडीज़ के मर्दों के गुप्त रोगों का इलाज डॉक्टर कुमार बुजुर्गों के मोढ़े गोडे दुखते हैं भाई डॉक्टर कुमार हर्बल वैगरा भी तुहानू वेचदे आ डॉक्टर कुमार हर तरह के इलाज वास्ते डॉक्टर कुमार 416-425-0138 ग्रेटर पंजाब प्लाजा मार्टन गुरु घर के कोल डॉक्टर कुमार 416-425-0138 ते कॉल कर सकते हो
2: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station, AM 5.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1115 ते 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
2: 416-509-1509
3: और visit insuranceforyou.ca।
4: Pataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection upper. Tusi cheap flight tickets si pal de vichon Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sono chahide ne. Ja tusi visa services di pal de vichon puri family vacation upper jaan di soch rahe ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna maji Pataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection upper. Call kar sakde ho 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection of
5: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
6: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
5: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
7: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको दौरा पै गया, टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर ले गया। आटा दाल चावल दाली सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट, दूसरी लोकेशन 20 ग्लिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 289-801-0566। नोबेल फ्रेश फूड।
8: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो न सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157
9: विमला विलेज पढ़दी पीओ च जंट पढ़दा विमला विलेज विलेज पढ़दी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਰਾ ਗੋਇਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਤਨੋ ਦੂਰ ਰੇਡੀਓ ਸੁਖੀ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ।

0: हाय रब्बा हुण की बनू
1: जे तुसी कार इंजरी च इन्वॉल्व हो गए हो या सट लगी है गलती तुहाडी या किसी होर दी ता याद रखो इको नाम बराड टेंबर पर्सनल इंजरी लॉयर
2: इना कोल है पंज तड़ले दा कैनेडियन जंपा लॉयर्स दी टीम
1: जो दवां दे ने वद तो वद लीगल सेटलमेंट नो अपफ्रंट फी इना दी टीम हुण तक मिलियंस डॉलर तक की सेटलमेंट करा चुकी है ते पैसे सेटलमेंट तो बाद ही चार्ज करदे ने आज ही कॉल करो रूपा बराड वरा नु 416-991-4169915939 बराड टेंबर पर्सनल इंजरी लॉयर हाईवे 10 एंड डेरी 6980 मार्टिस ड्राइव यूनिट 9 मिसिसागा
3: की तुसी अपने खुद दा रेडियो प्रोग्राम नवे साल दे विच शुरू करना चाहंदे हो फुल टाइम या पार्ट टाइम साडे पास कुछ टाइम स्लॉट अवेलेबल ने तो साडे नाल संपर्क करो 416-725-2551-416-725-2551 या 416-457-3381 तुसी अपना रेडियो प्रोग्राम कर सकते हो AM 530 तो तुसी सुन रहे हो अपना हरमन प्यारा रेडियो प्रोग्राम देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो पिछले 30 वर्षों तो तुहाडे अंग संग देश प्रदेश हुण अपने शाम दे प्रोग्राम दे विच वाधा कर चुका पहला तुसी सुनदे सी मंडी टू फ्राइडे 4 to 6 लेकिन हुण तुसी सुनदे हो 3 to 6 शामी जाने के देश प्रदेश तुहाडे लई शाम नूं 3 घंटे पेश हुंदा है ते नाल तुसी दुपहरे सरडे 1 to 4 शाम दे 4 बजे तक देश प्रदेश नाल सांझ पाउंदे हो देश प्रदेश रेडियो प्रोग्राम दे विच कोई भी अपने काम कर दी एडवरटाइज करनी होवे तां अफोर्डेबल पैकेज लई अज ही कॉल करो समराज सिद्धू होरां नूं 416-457-3381 416-457-3381 जां तजिंदर सिंह सिद्धू दे नाल कॉल करो 416-725-2551 416-725-2551 देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो पिछले 30 वर्षों तो 7 डेज़ अ वीक तुहाडे अंग संग चलो AM 530 ਮੋ